0: आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे।
1: वलौ नशा

0: उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे।
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी।
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था।
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा।
1: هذا وإن للطاغين لشر مآب
0: ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है।
1: جهنم يصلونها فبئس المآب
0: यानी दोजख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है।
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें।
1: وآخر من شكله أزواج
0: और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

0: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए FM 92.6।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम हयात तैयबा के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जिंदगी की मजीद वर्कगर्दानी अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। जफाकशी की जिंदगी, उन फवाने शबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का कोई मुअय्यन काम ना था। अलबत्ता ये खबर मुतवातिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरियां चराई और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद की रात के अवज चराते थे। 25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। इब्ने इसहाक का बयान है कि खदीजा बिन्त खौलैद एक मुअज़्ज़ज़ मालदार और ताजर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी और मजारबत के असूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीला कुरैश ही ताजर पेशा था। जब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रास्त गोई, अमानत और मकारम अखलाक का इल्म हुआ तो इन्होंने एक पैगाम के ज़रिए पेशकश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनका माल लेकर तिजारत के लिए इनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले जाएं। वो दूसरे ताजरों को जो कुछ देती हैं इससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आपने ये पेशकश कबूल कर ली। उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी। जब आप मक्का वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो इससे पहले कभी ना देखी थी, और इधर इनके ग़ुलाम मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के शीरी अखलाक, बुलंद पाया किरदार, मौजू अंदाज़ फ़िक्र, रास्त गोई और अमानत दाराना तौर तरीक़ के मुतालिक अपने मुशाहदात बयान किए तो हज़रत खदीजा को अपना गुंगश्ता गोहर मतलूब दस्तयाब हो गया। उससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस उनसे शादी के ख्वाह थे, लेकिन इन्होंने किसी का पैगाम मंजूर ना किया था। अब इन्होंने अपने दिल की बात अपनी सहेली नफीसा बिनते मुंबा से कही और नफीसा ने जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से गुफ्तगू शनीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम राज़ी हो गए और अपने चचाओं से इस मामले में बात की। इन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचा से बात की और शादी का पैगाम दिया। इसके बाद शादी हो गई। निकाह में बनी हाशिम और रुसाए मुज़र शरीक हुए। ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने बाद की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊँट दिए। इस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी और वह नस्ब व दौलत और सोच बोझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफजल खातून थी। ये पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफात तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। इब्राहिम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद उन्हीं के बतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और इन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सब बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए। अलबत्त बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत के शर्फ़ से मुशर्रफ़ हुई, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिवा बाकी सब का इंतकाल आपकी ज़िंदगी ही में हो गया। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात आपकी रहलत के 6 माह बाद हुई। सामईन, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फ़ा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद।
2: काबा की तामीर और हजर अस्वद के तनाजे का फैसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चार दीवारी की शक्ल में था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत न थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थी। इधर इसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसका बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था, इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा और मकाम बरकरार रखने के लिए इसे असर नो तामीर करें। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुतफ़िका फैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करें। इसमें रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का ना हक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को ढाने की जुर्रत नहीं होती थी। बिलाखिर वलीद बिन मुगीरा मखज़ूमी ने इब्तदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया, और जब कवायद इब्राहिम तक ढा चुके तो तामीर का आगाज़ किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलहदा अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई, बाकौम नामी एक रूमी मामार निगरां था। जब अमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ व इम्तियाज किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 रोज़ तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था कि सरजमीन हर्म में सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया मखज़ूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हुआ इसे अपने झगड़े का हाकिम मान लेंगे। लोगों ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की मुशैयत के इसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े कि ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप इनके करीब पहुँचे और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मामले की तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हजर अस्वद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद के मकाम तक पहुँच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को इसकी मुकर्रा जगह पर रख दिया। ये बड़ा माकूल फैसला था, इस पर सारी कौम राजी हो गई। इधर कुरैश के पास माले हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए इन्होंने शुमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिजर और हतीम कहलाता है। इस दफ़ा कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दें। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गई तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। नबूवत से पहले की अजमाली सीरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का वजूद इन तमाम खूबियों और कमालात का जामे था जो मुतफर्रिक तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकात में पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम असबात फ़िक्र, दूरबीनी और हक पसंदी का बुलंद मीनार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को हुस्न फरास्त, पुख्तगी फ़िक्र, वसीला मकसद की दुरुस्तगी से हज़ दाफ़िर अता हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर खौज़, दायमी तफकीर और हक की कुरैद में मदद लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी शादाब अक्ल और रोशन फितरत से ज़िंदगी के सहीफ़े, लोगों के मामलात और जमातों के अहवाल का मुतालिया किया और जिन खराफात में ये सब लतपत थी इनसे सख्त बेजारी महसूस की। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से दामन कश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान जिंदगी का सफर तय किया, यानी लोगों का जो काम अच्छा होता इसमें शिरकत फरमाते, वरना अपनी मुकर्ररा तन्हाई की तरफ पलट जाते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को कभी मुंह ना लगाया, आस्तानों का कभी जबी ना खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार और मेलों ठेलों में भी कभी शिरकत ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही से इन बातिल मबूदों से इतनी नफरत थी कि इनसे बढ़कर आपकी नज़र में कोई चीज़ मबगूज न थी, हत्ता के लात व उज़्ज़ा की कसम सुनना भी आपको गवारा ना था। इसमें शुबा नहीं कि तकदीर ने आप पर हिफाजत का साया डाल रखा था। चुनाचे जब बाज़ दुनियावी तमत्तुआत के हुसूल के लिए नफ्स के जज्बात मुतहर्रिक हुए या बाज़ नापसंदीदा रस्म व रवाज की पैरवी पर तबीयत आमादा हुई तो अनायत रब्बानी दखील होकर रुकावट बन गई। इब्ने असीर की एक रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जाहिलियत जो काम करते थे मुझे दो दफ़ा के अलावा कभी इनका ख्याल नहीं गुजरा, लेकिन इन दोनों में से भी हर दफ़ा अल्लाह ताला ने मेरे और इस काम के दरमियान रुकावट डाल दी। इसके बाद फिर कभी मुझे इसका ख्याल ना गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे अपनी पैगंबरी से मुशर्रफ फरमा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में शीरी किरदार, फाजिलाना अखलाक और करीमाना आदात के लिहाज से मुमताज़ थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बामुरव्वत, सबसे खुश अखलाक, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हमसाया, सबसे बढ़कर दूरंदेश, सबसे ज़्यादा रास्तगो, सबसे नरम पहलू, सबसे ज़्यादा पाक नफ्स, खैर में सबसे ज़्यादा करीम, सबसे नेक अमल, सबसे बढ़कर पाबंदे अहद और सबसे बड़े अमानतदार थे, हत्ता कि आपकी कौम ने आपका नाम ही अमीन रख दिया था, क्योंकि आप अहवाले सौले और खसाले हमीदा का पैकर थे। और जैसा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्दमंदों का बोझ उठाते थे, तही दस्तों का बंदोबस्त फरमाते थे, मेहमान की मेज़बानी करते थे और मसाइब हक में आनत फरमाते थे। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी और पहलू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कासिम भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

0: Let's get stress-free. Tune into FM 92.6, UCP Kidunia.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अजबत। हम बात कर रहे थे आज डिपेंडेंसी के ऊपर, बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात हो रही है मिस्टर इरफान अली फानी साहब के साथ और हम उनसे अब दोबारा जो है गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, बात भी हो रही थी जिंदगी के ऊपर, आप जिंदगी के ऊपर बात कर रहे थे, तो कि मुझे ये बताएं कि जिंदगी वाकई मुश्किल है या हम अपनी बातों से जो जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं।
2: अब देखो, जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि यार जिंदगी तो चिल करने का नाम है, जिंदगी तो बड़ी आसान है गुजारना, जिंदगी में कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको मुश्किल मुश्किल बातें करके ना जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। जिंदगी अपने वजूद में एक मुश्किल चीज नहीं है, एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है। जैसे मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने विच गन्ना, रौ नू कह मोहम्मद बख्शा विच रवे ते मन्ना। कि जिंदगी जब अपने आप को अपने प्रोसेस से गुजारती है और जब आप ये समझ लेते हो ना कि जिंदगी अपने वजूद में एक मुश्किल का नाम है, तो फिर जिंदगी के अंदर दूसरों पे इन्हिसार करना आप छोड़ देते हो। हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि असल में दूसरों पे इन्हिसारी हमें जिंदगी में आसानी नहीं दे रही। दूसरों पर इन्हिसार करना ही दरअसल जिंदगी को मुश्किल बना देता है। और दूसरी बात हमने ये समझना है कि जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं, जब इस बात का हमको एहसास हो जाता है कि वाक्यतन जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो जिंदगी में आने वाली फिर जितनी भी मुश्किलात होती हैं, हम फिर उन मुश्किलात से भागेंगे नहीं, उन मुश्किलात से फरार हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही तैयार थे कि जिंदगी मुश्किल है। मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को भी एक बात बताता होता हूँ, जब हम उनको असाइनमेंट सर ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि बच्चों जिंदगी इज नॉट एन इजी जॉब, जिंदगी लाइफ इज टफ, जिंदगी मुश्किल है। अभी से जब तक मुश्किल आप काम करोगे नहीं, तो जिंदगी के अंदर कभी भी आसानी को आप तलाश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों पे वो डिपेंडेंसी जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो आपने नहीं करनी। अपनी सलाहियतों, अपनी काबिलियतों और अपनी अहलियतों के बल बोते पर जब आप जिंदगी गुजारोगे, तो ना तो कोई आपको टीज कर सकता है, ना कोई आपको इरिटेट कर सकता है। लोग कभी भी आपको अपने आमाल की वजह से आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास आपके हर गम हर दुख का इलाज मौजूद है। नंबर एक ये बात हो जाती है। तो नंबर दूसरी जो मैं बात आपको करना चाह रहा था कि वो लोग जो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी आसान है, उनको जो मसाइल फेस करना पड़ते हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। अब उसी जिंदगी को आसान बनाने की ख्वाहिश जो है ना, इसने बहुत सारे लोगों की दुकानदारी चमका दी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मैं वेट लूज करना चाहता हूं और कोई आसानी से हो जाए, ये भी मेरी ख्वाहिश है। तो क्या होगा, मेरी इस ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट करेंगी वो कमर्शियल एंटिटीज, वो कंपनीज जो ये कहेंगी कि ये मेडिसिन खाएं, इतने हजार की मेडिसिन है, फलां बेल्ट बांधें, इतने हजार का ये बेल्ट है, बांधेंगे आपकी फैट जो है वो लूज हो जाएगी और आप जो है वो दोबारा से आपका वजन कम हो जाएगा। फिर क्या होता है, क्योंकि आप कहते हो कि मैं अच्छे नंबर लेना चाहता हूं और मुझे पढ़ना ना पड़े, क्योंकि आप आसानी को पसंद करते हैं, तो क्या होगा, कुछ अकेडमीज इस तरह के पोस्टर्स लगा लेती हैं कि बीए एक रात में, अच्छा एक हफ्ते में डॉक्टर बनी है, दो महीने में इंजीनियर बनी है, 15 दिनों में एंकर बनी है। ये वो पोस्टर्स हैं या ये वो एडवर्टीजमेंट हैं जो आते जाते रोज में मुख्तलिफ रिक्शों में ऊपर बैनर्स के ऊपर आता जाते मैं देखता हूँ।
1: कैश इन कर रहे
2: हैं। यस, अब यहाँ पे फिर एक्सप्लॉयटेशन होती है इंसान की उस ख्वाहिश की। वो ये चाहता है कि जिंदगी मेरी बड़ी आसानी से गुजर जाए, तो उस आसानी की ख्वाहिश में उसकी ये भी ख्वाहिश है कि कोई बैठे बैठे हर काम हो जाए, तो फिर उसको कैश करवाने के लिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसका जब आप हसूल की ख्वाहिश करते हैं जिंदगी के अंदर, तो आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं और जिंदगी के अंदर आपने कामयाब होना है, तो उस कामयाबी के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगी ना। अच्छा, जब आप मेहनत करने से कतराते हैं तो आप क्या करते हैं किसी के पास, जी मेरा जो बेटा है ना ये पढ़ता नहीं है, कोई तावीज कर दें ताकि ये पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, हमारे घरों में यही मसाइल हैं, आप कोई दम दरूद कर दें ताकि ये ठीक हो जाए। और भाई जब तक आपके अंदर से ये मोटिवेशन ही पैदा नहीं हो रही कि जब तक दुआ मेरे नजदीक क्या चीज है, कि दुआ उस डिवोशन और डेडिकेशन का नाम है, तावीज भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर से वो एफर्ट या आपके अंदर से उस ख्वाहिश के इजहार के लिए मेहनत नजर नहीं आएगी। मैं आपके सामने दो मंजर रखता हूं। एक मंजर ये है, एसी लगा हुआ है, मखमली जो पर्दे हैं उसने कमरे को ढका हुआ है, एक खूबसूरत और इंतहाई नरम व मुलायम गुदाज किस्म का बेड है जिसके ऊपर एक स्टूडेंट लेटा हुआ है, पास उसके लैपटॉप पड़ा है और उस पर म्यूजिक चल रहा है, हाथों में उसके मोबाइल है जिससे वो चैट कर रहा है, कल उसका पेपर है। ये एक सीन है। एक दूसरा सीन ये है कि एक बच्चा है जो रात के अंधेरे में, बिजली गई हुई है, घर में लाइट नहीं है, हाथ में उसने टार्च पकड़ी हुई है या लालटेन पकड़ी हुई है, उसको पकड़ के किताब उसके हाथ में है, वो पढ़ रहा है, रात के गुजरते हुए लम्हात में मच्छर उसके हाथों को काट रहे हैं, पूरे हाथों के अंदर मच्छर के काटने के निशानात पड़ चुके हैं, लेकिन वो रात 2-3 बजे तक मेहनत कर रहा है,
1: हिम्मत नहीं हार रहा और अपनी मेहनत
2: लगा हुआ है। ये दोनों सीन में दोनों ने अपनी माओ को कहा, पहले ने भी कहा अम्मी मेरा पेपर है दुआ कीजिएगा, दूसरे ने भी कहा अम्मी मेरा पेपर है दुआ कीजिएगा। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि किसकी दुआ कबूल होगी?
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें, मैं इसमें ये समझता हूँ कि हार्डवर्क जो है वो सबसे बेहतरीन चीज है, और एक उस जो बच्चा है वो अपने आप एक एक बैटल कर रहा है अपने साथ, और वो मच्छरों से भी इसको, मच्छर भी इसको काट रहे हैं, और वो एक देखें लाइट भी नहीं है और मोमबत्ती भी, उसने मोमबत्ती जलाई हुई है, लालटेन हाथ में पकड़ा, तो वो जो एफर्ट है ना वो अल्लाह ताला को भी पसंद है।
2: बिलाशुबा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि खुदा कभी किसी का रिश्तेदार नहीं होता है।
1: जी,
2: दो शख्स हैं, एक शख्स ने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, बारिश है, 5 वक्त का नमाजी है, और एक गैर मुस्लिम है, सैलाब आ जाता है, दोनों पानी में छलांग मार देते हैं, बचेगा वही जिसको तैरना आता है। इस बात पे वो शख्स नहीं बच सकता क्योंकि वो कुरान का हाफिज है, क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी है। जिंदगी या कुदरत या फितरत या खुदा ताला, उसने जिंदगी में कामयाबी और नाकामी के कुछ क्राइटेरियाज और सिस्टम और कोड्स फिक्स किए हुए हैं। जब जब आप उन कोड्स पे चलते हो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, चाहे वो आपकी जाती जिंदगी है, चाहे वो एक इज्तमाई कौमी जिंदगी है, उसमें वही कौमें और वही अफराद आगे जाते हैं जो पहले अपनी मेहनत करने के बाद दुआओं की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि किस चीज़ पे आए हो, उसने कहा जी मैं एक ऊँट पे आया हूँ। आपने कहा ऊँट कहाँ पे है? उन्होंने कहा जी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। आपने कहा बांधा नहीं? कहा नहीं बांधा। आपने फरमाया अभी जाओ उसको पहले एक महफूज मुकाम ढूंढो, उस महफूज मुकाम पे उसको बांधो, बांधने के बाद आप ये कहो कि अब ये अल्लाह के हवाले है। शायर कहता है कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर उस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। मुकद्दर तभी काम करेगा जब आप अपने पार्ट पे जो काम है वो मुकम्मल कर लोगे।
1: बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और यहाँ पर हमें अगेन एक म्यूजिक ब्रेक लेनी है। सामीन हमारे साथ रहिए और तब तक आप म्यूजिक को एंजॉय कीजिए और कीप लिस्टिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं जावेदा जिंदगी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अजमत। बड़े खूबसूरत तरीके के साथ बात कर रहे हैं जनाब इरफान इरफानी साहब और हम जो हैं अब आगे उनसे मजीद सवालात करेंगे। जनाब मुझे आप ये बताइए कि देखें जिंदगी में इंडिपेंडेंसी का फैक्टर भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए डिपेंडेंसी पे तो हमने बात कर ली, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए कौन सी ऐसी चीजें, क्या ऐसा स्टेप लिया जाए कि आपकी जिंदगी में जो इंडिपेंडेंस का फैक्टर है उसको उजागर किया जा सकता है।
2: अच्छा अजवद, मसाइल से नबर्द आजमा होने से ही जिंदगी को मानी मिलते हैं, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। मसला आ गया जिंदगी के अंदर, मुश्किल आ गई जिंदगी के अंदर, अब ये मेरा इंतखाब है कि मैं उसका सामना करूं, और दूसरा मेरा इंतखाब है कि मैं उससे फरार हासिल करूं कि नहीं ये मुश्किल नहीं है, कबूतर की तरह मैं आंखें बंद कर लूं। वो लोग जो मुश्किल का सामना कर लेते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर अजमत और खुशियां और मसरतें मुस्कराती है। हजरत अली अल मुर्तजा का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि आपने फरमाया था, जिसने अपनी बदहाली का पर्दा खोला वो अपनी खुशी से जलील हुआ। कि बहुत सारे लोगों दूसरे लोगों के सामने जाते हैं और हमेशा अपना रोना रोते रहते हैं कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस हाल में भी रहना उकताए हुए रहना, कि जिसको भी वो मिलते हैं यार ये बड़े मसले हैं, यार ये मसाइल बन गए हैं। तो जब आप लोगों को अपनी बदहाली का रोना रो रहे होते हैं ना लोगों के सामने, बुनियादी तौर पर आप खुद अपनी खुशी से और अपनी ख्वाहिश से जलील हो रहे होते हैं। इन चीजों को बचने के लिए बुनियादी तौर पर जब जब जिंदगी में हमारे मसाइल होते हैं, जब आप खुद उन मसलों को फेस करना शुरू कर देते हो तो जिंदगी का कोई मसला आपके लिए मसला नहीं रहता। शायर ने कहा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे के आसान हो गई, कि बाज़ुकात कभी कभी जब सर दर्द होता है तो इतनी शिद्दत से और मुसलसल होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उस दर्द की शिद्दत से ही आपको दर्द फील होना ही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल
2: सेम इसी तरह से जब मुश्किलात जिंदगी में आती हैं और बार बार आती हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो मुश्किलात आपके लिए मुश्किलात रहती ही नहीं है, क्योंकि आपने उन मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना किया।
1: बिल्कुल, आपने फैसला कर लिया होता है कि यार मैं अब ये जो मुसीबत है इसको मैं खुद टैकल करूंगा और उसके साथ लड़ूंगा, और वो फिर बैटल आपका जारी रहता है। बस जब हम देखते हैं इस दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा हो रहा होता है, और जो उन लोगों को जिनको हम बुरा समझते हैं उनके साथ अच्छा हो रहा होता है, तो इस लॉजिक के बारे में आप क्या,
2: मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी हमेशा मुनसिफाना नहीं होती।
1: बिल्कुल,
2: जिंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती है कि व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल एंड गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, गिर्दोनवाह में, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में हमारा ये नुक्ता नजर होता है कि यार इसको तो इतना सारा जिंदगी में नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, इतना आगे चला गया जिंदगी के अंदर, हालांकि इसमें वो क्वालिटीज तो नहीं है, ना वो इतना नेक है। अब मैं तो इतना परहेजगार भी हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, सारा कुछ होता है, मेरे साथ जिंदगी में ये क्यों हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब भी एक तलख हकीकत में है, और वो तलख हकीकत ये है कि जिंदगी हमेशा मुनसिफाना नहीं होती है, जिंदगी हमेशा जस्टिस नहीं करती है, जिंदगी हमेशा हर बंदे को इक्वली ट्रीट नहीं करती है। एक तरफ मोर के पंख हैं जो सात रंगों पर मुश्तमल हैं, खूबसूरत डिजाइन पे बने हुए हैं, एक तरफ कव्वे के पंख हैं जो काले हैं, जो स्याह हैं और बदनुमा हैं, एक तरफ कोयल की कुकू है जिसको आप सुनते हैं जो रूह तक तरावत आपको भेजती है, और एक तरफ कव्वे की काएं काएं हैं और कुत्ते का भौंकना है। तो फितरत ने भी कायनात को मुसावी बुनियादों पे नहीं बनाया, डाइवर्सिटी पे बनाया है, डाइवर्सिटी ही कायनात की बुनियादी उसूल है। तो जब जब हमें जिंदगी का ये अजियतनाक जो हकीकत है, इसको जितनी जल्दी हम ये भी कबूल कर लेंगे कि जिंदगी हमेशा मुनसिफाना नहीं होती है, जिंदगी हमेशा जस्टिस नहीं करती है, उतना ही आसान होगा हमारे लिए उन मुश्किलात को फिर फेस करना कि यस इट हैपन्स। हम बहुत देखो हमारे साथ कितना कुछ अच्छा होता है, हम कभी ये सवाल नहीं करते ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन जब जब हमारे साथ जिंदगी में अच्छा होता है तो हम फौरन से सवाल करते हैं, व्हाई मी सर। स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होते हैं, सर देखिए मैंने इतना पढ़ा भी था, मैंने ये भी किया था, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, फलां ऐसे ही था और उसको फलां जगह पे जॉब मिल गई। भाई जिंदगी के अपने उसूल हैं, जिंदगी का अपना एक पैटर्न है। आपके लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि जिंदगी जिस तरीके से आपको लेके चल रही है, मसाइल दे रही है, तो उसको कबूल करो, आंखों में आंखें डालो और गुजारो। और दूसरा ये है, उनसे फरार हासिल करो और पूरी उम्र रोते रहो। समझ आ रही है बात की? लिहाजा वो लोग जो बहादुरी से, जुर्रत से, हौसला मंदी से, ब्रेवरी से इन मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर चाहे जिंदगी मुश्किल हो, चाहे लोग आपकी खुशियों के लिए खुद को वक्फ करें या ना करें, चाहे जिंदगी गैर मुनसफाना भी हो, तो आप जिंदगी के अंदर अपनी मंजिलों का तायुन भी करते रहते हैं और खारदार रस्तों पर आबला पा चलते हुए मंजिलों से हम किनार भी हो जाते।
1: बल्कि सर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप अपने आप को एक वॉरियर कंसीडर करें, एक जंगजू। ये मुसीबतें जो आपकी तरफ आती जाती है, आप उनसे लड़ते जाते हो और फिर आप उनसे सक्सेस भी समटाइम हासिल करते हो, समटाइम जब लॉस होता है तो फिर आपको
2: बड़ी मजे की आपने बात कर दी कि जिंदगी अपने वजूद में किसी मंजिल के हुसूल का नाम नहीं है। जिंदगी अपने वजूद के अंदर एक मुसलसल जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत और एक जंग का नाम है। जंग जो बंदा लड़ता है वो हर वक्त अपने हथियारों के साथ विजिलेंट होता है कि कभी भी कहीं से कोई भी वॉर कर सकता है, सामने से भी वार हो सकता है, पीछे से भी वार हो सकता है। कभी भी जिंदगी में सफर, अगर आप ये समझ लो ना कि भाई मैंने सफर करना है और मंजर से हम किनार हो जाऊं या किसी गर्दाब में गर्क हो जाऊं, ये फैसला कोई और कर रहा है। मियां मोहम्मद बख्श का एक और शेर मुझे याद आ गया कि माली दा कम पानी देना, पर पर मशकां पावे ते मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। आप पर ये कंसर्न ही नहीं है, आपका ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि इससे मुझे क्या होगा। भाई आपको पैदा किया गया है, आप मुसाफिर हो, आपने सफर करना है, आप फाइटर हो, आपने फाइटिंग करनी है, आपने लड़ना है, आपने जुद्दोजहद करनी है। शिकस्त के खौफ से और फतह की खुशी से मावरा हो जाओ तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो आप अपनी मेहनत कभी ये मत सोचो कि भाई अगर मैं हार गया तो क्या होगा, हमेशा ये सोचो कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा।
1: बिल्कुल। अरे सर अब मुझे ये बताइए, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। बात उसका हमारी जिंदगी में आप देखिए सहल पसंदी एक चीज होती है, आसानी ढूंढना। तो क्या पता क्या ये सहल पसंदी इस बात की वजह है कि हम लोग जो है अपने जो सितारों की गर्दिश और हाथों की लकीरों को जो है हम अपनी नाकामी और कामयाबी का बायस समझते हैं, तो क्या सहल पसंदी इसका एक रीजन?
2: नेपोलियन एक दफा एक पामिस्ट के पास गया और नेपोलियन ने कहा क्या मेरे हाथ में हुक्मरानी की लकीर है?
1: बिल्कुल।
2: तो पामिस्ट ने कहा जी तुम्हारे हाथ, तुम तो कभी दुनिया के हुक्मरान बन नहीं सकते। उसने एक नाइफ, एक छुरी, एक ब्लेड उठाया और उससे अपने हाथों को ऐसे चीर लिया और फिर कहा कि अब बताओ मेरे हाथों में लकीर है। फिर पामिस्ट ने कहा कि लकीर है या नहीं है, तुम दुनिया के हुक्मरान बन जाओगे। बच्चों जब जब हम अपनी काबिलियतों और सलाहियतों को खंगाल और खोजे बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर या तो हम सितारों की चालों पे इक्तफा करेंगे या हाथों की लकीरों पे इक्तफा करेंगे या ये जो तावीज लेके कहीं आने जाने पे इक्तफा करेंगे। तो जिंदगी में जब जब आप अपनी स्ट्रगल से मुंह मोड़ना चाहते हो तब तब आप उन सहारों का हिस्सा बनते हो या उन सहारों को हासिल करने की कोशिश करते हो और जिंदगी कभी सहारों के जरिए नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी के अंदर अगर कोई सहारा है खुदा और रसूल के बाद तो वो इंसान की अपनी जात होती है।
1: बेशक, वेरी वेल समड अप और बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात हुई और ये बड़ा जरूरी था डिपेंडेंसी का टॉपिक, क्योंकि हम समटाइम्स कुछ चीज़ों को नलीफाई इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ों को इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी समझा। जी लिसनर्स, अब आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा और हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने बात की है और जिंदगी के ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था डिपेंडेंसी, तो आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया। मुझे इजाजत दीजिए, तो टिल देन आप सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। आप अपने होस्ट अली हजमत को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
3: सूफी सिंह ज़हू, दैट विच इज, दैट विच वाज, दैट विच विल बी।
4: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
5: لاهور's number one radio station FM 92.6.

0: टिकी के सुर और तान, सुर और तान, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: यू आर ऑफ, टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: 50 16 is on what?
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा